होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa Play Laika Radio Punjabi Punjabi
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू

0: सबसे निराला Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: Animals can't speak to drivers, but if they could, they would be asking us, telling us by the sounds of it, to put our litter and fruit waste in the bin. Because roadside litter kills an estimated 3 million animals every year. No wonder they sound miffed. So let's lend them a paw. Let's take our rubbish with us and bin it properly. National Highways. And what's that? They said thanks very much.
4: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
5: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
6: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाएं जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
7: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। जापान जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
8: ब्रेकफास्ट विद काजल,
9: लाइका रेडियो।
8: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.

0: listen to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
2: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, a taste of tradition in every celebration. Loved by generations since 1970.
4: This is Laika Radio across the Midlands. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: से चमकीले पत्ते फलारे पर डाली डाली सीस झुका के बैठे कितने सुंदर लगते हैं ये छैल छबीले पत्ते नंगे नंगे पेड़ों का है अब भीष भिक्षुओं जैसा त्याग दिए हैं सोने जैसे सब चमकीले पत्ते धरती अंबर चांद सितारे सब तेरे हो जाएं सर पे ताज सजा कांटों का तन पे पीले पत्ते रुत बसंती कोयल कूकी झूमी डाली डाली पवन हिलोरों की संगत में गाएं सुरीले पत्ते प्रकृति पर भी भाई जब कलम चलती है चमन जी की ऐसी रचनाएं वो देते हैं देखिए हम बहाने से उन्हें याद करते हैं हमारे साथी पुराने साथी प्यारे साथी चमनलाल चमन की भाई इस कविता के साथ ही आगाज करते हैं प्रोग्राम का सोमवार वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 12 तारीख ठीक बोला हाँ सोमवार है क्या हो गया शर्मा जी आपको भाई आजकल भुलक्कड़पन जो है वो हावी होता जा रहा है पक्का सोमवार है ना
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Leica Radio network.

0: याद दिला दें हम अपने श्रोताओं को, भाई ये माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है और हम शक्ति माँ के चरणों में अपने सभी श्रोताओं की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः।
1: ये माता का वो पड़ाव है जहां के लोगों पर पाप की काली छाया कभी नहीं पड़ सकती। माता की पूजा का उजला भाव लेकर जब इस गांव की सुहागनें दीप ज्योतियां लिए माता के दरबार की ओर बढ़ती हैं तो पाप का अंधेरा छटता चला जाता है, पुण्य का उजाला फैलता चला जाता है। यहां की औरतें
0: यहां के लोग यहां के श्रद्धालु मां से शक्ति मांगते हैं, ऊर्जा मांगते हैं, एनर्जी मांगते हैं।

0: शुरुआत हो गई है मनोरंजन कार्यक्रम के भाई। आरंभ में हमने माँ भगवती शक्ति की भेंट सुनवा करके याद दिलाया आपको कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और भाई आज दूसरा नवरात्रा है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। आज माँ भगवती का वो स्वरूप ब्रह्मचारिणी, एक संयम भरा जीवन, एक नियमों में बंधा हुआ जीवन और एक ऐसा डिसिप्लिन जो है जीवन होता है जिसमें आप सीखने के लिए, जानने के लिए और दुनियादारी को समझने के लिए जो है माँ भगवती की उपासना करते हैं, राइट। और आज कल भाई वो कम्युनिटी सेंटर्स में, मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। डांडिया गरबा गुजराती कम्युनिटी करती है, सभी शामिल होते हैं उनमें, लेकिन मंदिरों में चौकी जागरण, माँ भगवती का गुणगान भाई वो सब भी चल रहा है। और इसी सिलसिले में अगर आप हंसलों के आसपास रहते हैं तो भाई कल हमने एक आयोजन किया है, हम आपको स्वागतम कहेंगे अगर आप आएंगे तो। हंसलों की लक्ष्मी नारायण मंदिर में रवि शर्मा अपने परिवार की ओर से आपको आमंत्रित कर, लेकिन उधर रहते हैं तो आप आइए, गाइए, खाइए प्रसाद। हम उपवास करते हैं तो उपवास में फलाहार की व्यवस्था होती है, पर आप जहां भी हैं वहां माँ भगवती का स्मरण करें, गुणगान करें और भाई माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो पहला जो गीत था, पहली जो भेंट थी हम कहेंगे वो दिलराज कौर और साथियों की आवाज़ों में थी, और उसके बाद भाई ये दूसरा गीत जो है मिल गया हम किसी से कम नहीं फिल्म से हमने लिया था। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK today giving for £1 in Indian currency 126.3 rupees. 126 rupees aur 30 paise ka rate chal raha hai. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leica Radio. This Diwali, let your celebrations shine brighter.
3: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
2: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
3: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
2: And wait, the Diwali mega offers are here.
3: Bigger savings, amazing prices and fantastic value. All under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style.
2: Falcon Cash and Carry. Your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place.
5: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties.
7: कभी सोचा है 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो?
8: दिल चाहता है on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
9: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी है, तुम्हें क्या लगता है?
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/saff-uk. London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: London, get ready for an unforgettable night.
10: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
10: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
11: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
3: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: Khakra Crunch Bhakri Munch Chicky Sweet Popper Beat Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
13: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen Papad Pickles Chicky Pot Meals and much more.
12: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
15: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
16: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाएं जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
17: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। जापान जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
18: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लौटाइए संगीत की ओर। मॉडर्न जमाने में अपना संदेश अपने प्रियतम तक पहुंचाने के लिए कितने ही साधन अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि काश पंख होते हमारे पास तो पहुंच जाते प्रीतम के पास।

0: बरसों पुरानी धुने आज भी भाई लोग बड़ा दिल लगाकर सुने, इसीलिए तो ये गोल्डन गीतों का खजाना कहलाता है, लाइक अ गोल्ड।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a radio.
0: और बहनों भाइयों, लाइका गोल्ड रेडियो पर, लाइका रेडियो नेटवर्क पर अब समाचारों का समय हुआ जाता है। और खबरों में भाई एक खबर जो सबको परेशान कर रही है वो टाइगर के अटैक में एक नौजवान की मौत हो गई। लेकिन अब उस टाइगर को मार कर नहीं गिराया जाएगा भाई, मारा नहीं जाएगा क्योंकि उसने अटैक नहीं किया, उसके भाई पिंजरे में आए, उसके इलाके में कोई एंटर करेगा और उसके साथ वो सेल्फी लेने का जो शौक है उसके कारण जो खबरें मिली हैं, तो भाई उसके वो व्यक्ति उसकी नज़दीक आया और अब तस्वीर खिंचाने का वो दुस्साहस, लोग जो अपने आप को साहसी व्यक्ति साबित करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं और वो उसका शिकार हो गया। उसे बचाने की डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए, उस नौजवान की मौत हो गई। द टाइगर दैट अटैक्ड ए मैन एट यॉर्कशायर पार्क विल नॉट बी किल्ड। और इसके अलावा एक खबर ये भी है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई उनका बुद्धिया ही इज़ वेरी, ये पहले कह चुके हैं कि ही इज़ वेरी ओपन माइंड अबाउट रीज्वाइनिंग द ईयू, और साथ ही अब उनका बयान आ रहा है कि ब्रेक्सिट के मामले में रशिया का भी रोल रहा, रशिया ने भी भूमिका निभाई। और भाई ये खबरें आ रही हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट से। इसके अलावा और क्या क्या है आज की खबरों में, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के विशेष समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में, भारत के केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कल मध्य प्रदेश के वन विभाग और दूसरे अफसरों पर अपने विदेशी बाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आदिवासी परिवारों के घर गिराने, फसलों को तबाह करने और एक कुएं को मिट्टी से भरने की बात कही है। शिवराज कल संडे को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के कोसमी गांव पहुंचे जहां ये कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों ने यहां जो किया है वो जुल्म की हद है। मैं उनसे पूछता हूं कि अगर उनके अपने बच्चों को इस तरह से दुख में रोता बिलखता छोड़ दिया जाए तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा। कार्रवाई भी की जाएगी, शिवराज कह रहे हैं। दिल्ली की जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, मेट्रो में सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व सीट पर बैठने को लेकर के विवाद में एक 38 साल नौजवान की मौत हो गई है, शख्स की मौत हो गई है, नौजवान नहीं कहेंगे। पुलिस के मुताबिक विवाद के दौरान पवन शर्मा को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया और धक्का दिया जिससे वो गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। मामले में पुलिस ने फॉर्मर आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। पाकिस्तान से आने वाली एक खबर में, भाई पाकिस्तान में ये तो आप सुन चुके हैं कि वहां खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और गवर्नर रूल लागू कर दिया गया है, लेकिन होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया है सरकार ने। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 11 अक्टूबर इस साल राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इमरजेंसी और गवर्नर रूल का ऐलान कर दिया था। फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की प्रांतीय सरकार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकार ने पार्लियामेंट्री संपर्कों, प्रत्यक्ष बातचीत यानी सीधी बातचीत और पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक कोशिशों सहित तमाम माध्यमों से सहयोग स्थापित करने की कोशिश की, हालांकि इनका कुछ नतीजा नहीं निकला। दिल्ली हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स से अपील की है कि वे सोमवार को यानी आज काली पट्टी बांध करके अदालतों में जाएं। दरअसल 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वकीलों के साथ कथित मारपीट के मामले सामने आए, जिसके बाद बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने मेंबरों से यह रिक्वेस्ट करती है कि वे 12 अक्टूबर यानी आज काली पट्टियां बांध करके अदालत में हाजिर हों। ओमान के पास एक भारतीय क्रू मेंबर्स वाले एक टैंकर पर संडे को ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से 9 को इसमें बचा लिया गया है, 2 अभी लापता हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कल रात को मामले की जानकारी साझा करते हुए 2 नागरिकों के लापता होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को सुहार एंकरेज में भारतीय टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से अटैक किया गया था। और भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत ने सोमवार को यानी आज कहा है कि वकीलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है। उन्होंने ये टिप्पणी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान वकीलों को हिरासत में लिए जाने और पुलिस की सो कॉल्ड जातियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की करप्शन के बारे में पता है और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम वही सवाल उठा रहे हैं जो 2 चुनाव कमिश्नर्स ने पूछा था, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। और भाई क्रिकेट में अगर आपकी दिलचस्पी है तो बता दें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने जो जीत दर्ज की उसमें ये भाई जो अभिषेक शर्मा ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है या रिकॉर्ड तोड़ा है, उसका जिक्र आगे चल करके क्रिकेट की खबरों में करेंगे। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
0: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ Create wealth with a small investment every month. That new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the That New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
2: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
0: Adults £30, children aged 5 to 12 just £15 and under 5s go free.
2: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship call Rakesh on 07436 594 323.
0: Sponsored by
2: Garg Solicitors, award-winning nationwide jewellers Diamond Heaven, ICNW Limited and SBI UK.
0: Radio partner, Leica Radio.
3: Start to

वेरी गुड मॉर्निंग। मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में श्रोताओं का स्वागत है। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर लाइका गोल्ड पर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। लाइका रेडियो मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड लाइका नेटवर्क के हिस्से हैं और इस पर भाई मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से दोपहर बाद 1 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। मेरा प्रोग्राम आप सुनते हैं मनोरंजन। इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, हम पेश करते हैं आज का विचार, थॉट फॉर द डे, यानी चिंतन। और साहब, आज के चिंतन में हम एक राइटर की भेजी हुई ये रचना, हम पे एक मतलब प्रसंग, एक आलेख हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आज 12 अक्टूबर को नवरात्रों में मां भगवती शक्ति का दूसरा नवरात्रा है। बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी है आज, कईयों की शादी की सालगिरह। लेकिन साहब, जन्मदिन मनाने वालों में एक साहित्यकार का, एक

साहब का जन्मदिन है। बंदीदा साहब अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी उनके किस्से हैं, उनकी शायरी है, और साहब उनकी कलम से कुछ ऐसे संदेश निकले हैं जो चर्चा का विषय रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत से लोगों के जन्मदिन है भाई, लेकिन निदा फाजली इसलिए चर्चा में है कि उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसका बहुत सम्मान हुआ, लेकिन उस पर विवाद भी हुआ। जन्मदिन मनाने वालों में तो आज भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, क्रिकेटर, और भाई शाही परिवार से महाराजा, वो उनका भी है जन्मदिन, 1891 में जन्मे थे। भारत के फॉर्मर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल भी आज ही के दिन जन्मे थे, लातूर में 1935 में। प्रतिमा बेदी का जन्मदिन आज है, बेबी मीनाक्षी, विजया राजे सिंधिया, शाही परिवार से, राज परिवार से हैं ये, सिंधिया परिवार में। अब आप चौंकिएगा नहीं मैं कहूं कि मैं इनसे भी मेरी मुलाकात हुई और लंदन में हुई, 1919 में जन्मी थी ये विजया राजे सिंधिया। विजय मर्चेंट, महान क्रिकेटर भारत के भाई, आज ही जन्मे थे 1911 में, और जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो हैं निदा फाजली साहब, ग्वालियर में 1938 में इनका जन्म हुआ। और साहब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना तो बहुत सारे लोग वहां चले गए, पर निदा फाजली कहते मुझे इस धरती से प्यार है, यहां की तहजीब, यहां के लोग, अब मैं इनके बीच में रच बस गया हूं। फिर 1960 के आसपास एक कुछ ऐसा वहां पर वातावरण बना, ऐसी घटना घटी ग्वालियर में कि इनके माता पिता, इनके परिवार वाले भाई, वो भी ये मुल्क यानी भारत छोड़कर के पाकिस्तान चले गए। निदा फाजली अब भी नहीं गए, वो कहने लगे कि भाई व्यक्ति कहीं भी रहे, अपने आचरण से अगर उसे अपनी संस्कृति से, तहजीब से, भाषा से, जबान से, अपनी कलम से और उसके अभिव्यक्ति से, एक्सप्रेशन से प्यार है, तो वो कहीं भी बैठ करके रचेगा, लिखेगा और वो अमर हो जाएगा, वो फिर सीमाएं लांघ कर पहुंचेगा। एक बार किसी कारण से उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, एज ए विजिटर वो गए, और जब वो लौट कर आए तो लोगों ने पूछा कैसा लगा पाकिस्तान, और साहब उन्होंने जो जवाब दिया वो शायरी बन गया और वो फिर बड़ा मशहूर हुआ। यहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई एक कार्यक्रम के तहत, तो निदा फाजली साहब ने अपनी वो रचना पढ़ी थी कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं जो हिंदुस्तान में ना हो, इंसान में हैवान यहां भी है और वहां भी, अल्लाह निगहबान यहां भी है और वहां भी, खून खार दरिंदों के फकत नाम अलग हैं, खून खार दरिंदों के फकत नाम अलग हैं, हर शहर बियाबान यहां भी है और वहां भी, हिंदू भी सुकून से है, मुसलमान भी सुकून से, सब चैन से हैं, इंसान परेशान यहां भी है और वहां भी। रहमान की रहमत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहां भी है और वहां भी, क्या खरी खरी लिखते थे निदा फाजली साहब। अब साहब उनके जीवन की एक घटना जो विवाद का विषय बनी, उनका एक गीत है, अगर वो गीत आप थोड़ा सा सुने फिर पूरा सुनवाता हूं, उस पर बड़ी पाकिस्तान में प्रतिक्रिया आई। गीत ये है, देखिए, घर से मस्जिद है थोड़ी दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये तहजीब है हिंदुस्तान की कि वो हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है,
इसलिए जब प्रणाम करते हैं, नमस्ते

कहते हैं तो आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। अब ये गीत जब निदा फाजली साहब ने लिखा, इसके बोल चर्चित हुए तो पाकिस्तान में कुछ धार्मिक लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। आप कैसे कह सकते हैं एक बच्चे के सामने अल्लाह की वो जगह।

बहुत सारे लोग भाई इस तरह की बातें करते हैं भारत में उसकी तहजीब का हिस्सा है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो ये तो यार मजाक का है पर दिल ना तोड़ो कभी किसी का ये घर खास खुदा का है और बच्चे में है भगवान बच्चा कुदरत की शान ईश्वर इसमें अल्लाह इसमें है भगवान अब साहब इस गीत पर इतना ऑब्जेक्शन हुआ हंगामा हुआ वहां के पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी सब कहने लगे क्या बच्चे को आप अल्लाह से बड़ा समझते हैं मस्जिद को आप कहते हैं कि इबादत से हटाते हैं कि वहां जाने को तो मना करके कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए आप हैरान होंगे बड़ा बढ़िया जवाब दिया निदा फाजली साहब ने उन्हें शांत करने के लिए बोले देखो ये मस्जिद को इंसान के हाथ बनाते हैं जबकि बच्चे को अल्लाह अपने हाथों से बनाता है बताइए हुआ के नहीं बेटर लोग चुप हो गए भाई उनकी रचनाएं बड़ी असरदार भाई साबित हुई हैं आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन हम उनकी रचनाओं के माध्यम से और उनसे एक मुलाकात यहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेरी हुई थी उसके जरिए हम याद कर

0: घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर दें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। प्रैक्टिकल भाई, एक ऐसा विचार जो विवाद का विषय बना लेकिन संवाद का विषय भी बना। निदा फाजली साहब का आज जन्मदिन है। आज वो दुनिया में होते तो भाई अपना बर्थडे मना रहे होते। 1938 में 12 अक्टूबर को उनका ग्वालियर में जन्म हुआ था। भारत में भाई वो रहे और पाकिस्तान में उनका परिवार जब माइग्रेट कर गया उसके बावजूद भी उन्होंने भारत में ही रहना जो है पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला लिया कि वो भारत में रहेंगे, इसी सरजमी से, इसी तहजीब से, इसी शायरी से और यहाँ की जबान से, यहाँ की भाई जो वातावरण है उससे जुड़े रहेंगे। निदा फाजली साहब को हमने याद किया और भाई आपका भी धन्यवाद करते हैं हम। एक तो हमारे जो है अभिषेक श्रीवास्तव आपकी कविताओं की, और भाई एक और हमारे श्रीवास्तव, ये श्रीवास्तव बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष भाई आपकी जो पुस्तक है जो आपने लिखी है कहानियों वाली, जो अभिषेक ने कविताएं लिखी और भाई एक कविता उन्होंने अभी हाल ही में उस पायलट पर लिखी जिसने 174 लोगों की जान बचाई फ्लाई दुबई के हवाई जहाज में जो घटना घटी थी। लेकिन हमारे पीयूष जी साहब जो है आपकी कहानियों की पुस्तक जो है बहुत प्रभावशाली है और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ करके इसे फिर मैं आपसे संपर्क करूँगा। लेकिन आपका भी जो है जो मैं अभिनंदन करता हूँ, ब्रिटेन में भारत से आप आए हैं, स्वागत है भाई। आज का चिंतन समेटते हुए बता दूं ये जो गीत आप सुन रहे थे दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म तमन्ना, और गायक कलाकार थे सोनू निगम। याद दिला दूं चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, अच्छा रेट चल रहा है, पैसे भारत भिजवाने हो तो उनकी सेवाओं का फायदा उठाइए। They are giving today for £1 in Indian currency 126.3 रुपीस, 126 रुपए 30 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
4: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for £11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for £3.50. Falcon Broken Cashew Nuts, 600 grams, just £2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits, 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea, 1 kilo, £3.99.
3: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali!

0: This is Leica Radio across the Midlands.
1: Back to back. संगीत सुनवा रहे थे हम आपको भाई, ये हर घंटे में होता है, लेकिन इस समय जो 11 बजे की खबरों के बाद बैक टू बैक संगीत जो है वो चिंतन के बाद आता है। याद दिला दें भाई, दोपहर बाद 1 बजे तक आप मेरे साथ ये कार्यक्रम सुनेंगे। वैसे लाइका गोल्ड और भाई लाइका रेडियो मिडलैंड 24 घंटे सातों दिन, दूसरे भी हमारे रेडियो जो हैं लाइका रेडियो नेटवर्क के, वो 24 घंटे 24 आवर्स 7 डेज जो है आपके लिए हाजिर रहते हैं।
2: ये है Leica Radio Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

हरियाली बहुत अच्छी लगती है, आंखों को सुहाती है, खूबसूरत होती है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है भाई। लेकिन अपनी हरियाली को बचाए रखने के लिए दूसरों के घर के सामने जाकर के आप अपना कूड़ा जलाएं, ये भाई गीता रोज बताती है कि मेरे घर के सामने सुबह एक औरत जो है आग लगा रही थी, जला रही थी कुछ। मैंने पूछा ये क्या कर रही हो, कहती है कि ये कूड़ा जलाना है मैंने, तो इसलिए मैं गार्डन का ये रबिश है। तो उसने कहा पर मेरे घर के आगे क्यों, कहती मेरे घर के आगे गार्डन बहुत खूबसूरत है, बहुत हरा भरा है, इसलिए मैंने सोचा वहाँ मैं नहीं खराब करना चाहती। मैडम ए मैडम, हरियाली और घरियाली सबको अच्छी लगती है। एक तो हरियाली और एक साहब हमारे घर के सामने वो रास्ता पब्लिक के लिए है मैडम, सबके लिए है। लीजिए ये गीत सुनिए और अपना झगड़ा सुलझाइए।

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
2: Hey, boy!
3: Coast Guard, we're stuck.
4: Okay, help's on its way.
5: Hold on, mate.
6: Shoes tied. Phone.
7: Back before dark, love. Okay.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: is Laika Radio across the Midlands.

और साहब इस प्रार्थना के लिए फरमाइश आई कहां से? होस्ट कम्युनिटी अफगानिस्तान के वो लोग भाई जो होस्ट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। कल राधा कृष्ण मंदिर बालहम में उन्होंने शानदार शुरुआत की नवरात्रों की। और कालिंदर बताते हैं कि रवि जी हम आपके कार्यक्रम जो है हमारे सभी कम्युनिटी के लोग बड़े प्यार से चाव से सुनते हैं और हम माँ भगवती के स्मरण से नवरात्रों का आरंभ कर रहे हैं। बहुत सारी दुआएं शुभकामनाएं भाई माँ

भाई संघर्षों से जूझते हुए हालात से लड़ते हुए अफगानिस्तान से जो यहां ब्रिटेन में आकर के बसे हैं अफगानी हिंदूज भाई बताते हैं अपने ससुर अपनी यादें और शानदार भाई उन्होंने यहां पर बस के दिखाया है कारोबार चलाए हैं पूछो तो कहते हैं मां की कृपा है प्रभु का आशीर्वाद है

और भाई ऐसे गीतों को गोल्डन कहते हैं, लाइक अ गोल्ड पर ये प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर मनोरंजन का। माय नेम इज रवि शर्मा, आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।

0: Asia Radio, finalist in three nominations at the Asian Media Awards 2026.
1: आज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: नहीं नहीं पसंद करने में क्या जाता है साहब, कोई बिल थोड़ा ही भेज रहा हूं मैं आपको, पसंद कर लो, जबरदस्ती से पसंद करवा देती हैं भाई आजकल लोग, क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए आपको भी पसंद होगी, ये कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे भाई घर में पत्नियां बिहेव करती हैं। लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो मिडलैंड्स और भाई लाइका रेडियो नेटवर्क के कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं। और बहनों भाइयों, दो गीत सुनवाने के बाद हम बताते हैं आपको SBI द्वारा आज का पाउंड रेट अगेंस्ट इंडियन रुपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India, SBI UK. याद दिला रहे हैं भाई आज का रेट। आज एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 126.3 रुपीज मैक्सिमम, एक पाउंड के बदले 126 रुपए 30 पैसे अधिकतम। और यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah. Like our radio.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: गीत संगीत सूचनाएं समाचार और चिंतन विचार भाई ये सब आप सुनते हैं मनोरंजन प्रोग्राम में मनोरंजन विद रवि शर्मा

0: जाने तुझको खबर कब होगी हा? कैसे होगी खबर, कौन पहुंचाएगा खबर? बेकदरा है वो, बेमुरव्वत,
1: उसके प्यार में दबा हो गई।
0: वो जैसे करता ना अपना सुनील ग्रोवर,
1: जिंदगी खराब हो गई
0: भाई। उनके प्यार में मैं इतना रोई, उसके प्यार में मैं इतना रोई कि आंसुओं से टब भर गया और वो ऐसा बेशरम निकला कि उसमें नागे निकल लिया।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Leica Radio. This is Leica Radio Midlands. Now also available in Greater Manchester, Leeds and

0: mix are brought to you by Southall Travel.
1: भाई साउथ ऑल ट्रेवल का संदेश सुनवा दें आपको, उसके बाद गीत भी सुनवाएंगे और गीत बहुत ही प्यारा है, चूकिएगा नहीं। तो संदेश ये साउथ ऑल ट्रेवल का, वो बार बार याद दिलाते हैं कि भाई उनके यहाँ जो दुबई की डील्स है ना, बड़ी अट्रैक्टिव है, अफोर्डेबल है और दे आर एट सेलेक्टेड पार्टनर्स होटल्स के साथ विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर 3 nights. Travel by 10th December. Ye bhai dhyan rakhiyega. Call South Hall Travel on 0208 843 4444 or visit southhalltravel.co.uk. Ye geet sochiyega pehle kab suna tha. Bachchon ke saath school mein jab teacher practice karwati hai, gana sikhati hai, kya puchti hai?

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: और भाई Southall Travel का संदेश तो हम आपको बता चुके हैं कि वो डील है उनकी दुबई के लिए 629 पाउंड पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स 10 दिसंबर तक आपको संपर्क करना होगा उनका नंबर फिर दोहरा दूं 02088434444
0: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Yeh hai Laika Radio. Laika

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
2: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
3: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Ravi Sharma on Laika Radio.
4: और भाई लाइका गोल्ड पर मनोरंजन प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के संदेश आए हैं. मैं सबका धन्यवाद तो करूं ही, सबको हैप्पी नवरात्रि भी कहूं. कईयों ने क्या कहते हैं मंडे के शुभ नए सप्ताह की शुरुआत के लिए दुआएं शुभकामनाएं भेजी हैं. वत्सला जी, आपका संदेश तो हमेशा प्राप्त होता है और आप श्लोक भेजती हैं शुभकामनाओं से भरे हुए. थैंक यू वेरी मच. माता सती करे दे में गुजरा में गिरा था अंबाजी शक्ति पीठ में एक अनोखी अनुभूति होती है. जय जय मां अंबे. मैं नवरात्रों में आमतौर पर ना एक भेंट तो अपने कार्यक्रम जरूर शामिल करता हूं, तो आज सुनवाई है, कल भी सुनवाएंगे. वो आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी, सुनते रहिएगा. अनिल सोनी वियाना में सुनते हैं हमें और आज कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का आज जो उपासना का दिन है. शरदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. शरदीय भाई दो बार नवरात्र आते हैं, ग्रीष्म नवरात्रि अप्रैल में आते हैं और ये आते हैं अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के आसपास. तो साहब अनिल जी याद दिला रहे हैं आपको भी शुभकामनाएं. सलाव में रानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हरीश छाबड़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और इसके अलावा भाई और जो लोगों के आपने तस्वीर बहुत सुंदर भेजी है, माँ भगवती की आशीर्वाद को भाई हम दर्शन करके प्राप्त करते हैं. माता रानी की चौकी कहाँ कर रहे हैं आप? आसामाई मंदिर लंदन में. भाई आसामाई मंदिर में कल हम अफगान कम्युनिटी में ही थे और ये अभिषेक शर्मा जो कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं वो कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ. इसके अलावा जर्मनी में हम इस कम्युनिटी में मिलके आए, बहुत अच्छा लगता है अफगानियों से मिलकर के. उल्लास टोरंटो में नैना शाह, पम्मी सिंह, मंजू खैनबी, फतेह पटेल बुलवर हैम्पटन में लगातार लिखते हैं. हरविंदर जी जगदीश बुशी में, अंजलि सिंह. अंजलि थैंक यू वेरी मच, जय माता की आपको भी. और बक्सरहीत से आप लिखती हैं. नीला चौधरी, हरीश शाह, जैस्मीन, अरुणा, रंजन और हिना, फरीदा गुलाम अली, मानसी, सहर, भरत, गंगाराम, अनिल भट्ट और मृदु, हमारी प्यारी मृदु, अब बहुत बहुत धन्यवाद. निर्मला जी, हेतल सोलंकी और हर्षदा लिंबानी, भाई बेहद शुक्रिया. नवरात्रों की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं माँ भगवती आप पर. अपनी कृपा का हाथ हमेशा रखें ये दुआ.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: Kishore Kumar, Lata Mangeshkar.

0: वापस ले लो वरना बहुत पछताओगे दिल फेंक मुरादाबादी
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates. वही जो बदला है या वही चल रहे हैं थोड़ा बहुत तो फर्क मिलेगा जो सुबह बता रहे थे उससे मतलब इस समय एक पाउंड के बदले ये LemFi वाले दे रहे हैं भारतीय मुद्रा में 126.55 रुपए यस इंडियन करेंसी फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 126.55 रुपीज पाकिस्तानी 366.49 रुपीज श्रीलंकन 437.85 रुपीज एंड मॉरिशन रुपए 62.92 केनियन शिलिंग्स 171.63 बांग्लादेशी टके 163.14 And Afghani, 85.83.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 101.39 pounds per gram.
3: Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
0: Tareef karun kya uski jisne tujhe banaya. पत्नी ने शिकायत की डॉक्टर से डॉक्टर साहब मेरे पति रात को नींद में बोलते हैं मैं डिस्टर्ब होती हूं डॉक्टर कहता है उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करो रात को नहीं बोलेंगे

जाने का समय हो गया है, लेकिन साहब साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वादा है, इरादा है। वैसे कालचक्र दोहराता है, जीवन के इस रंग मंच पर सूत्रधार ये गाता है कि कालचक्र दोहराता है। खुद ही नाटक बार बार सदियों से खेला जाता है, एक ही ड्रामा और एक कथा ही कथाकार हमें बार बार समझाता है कि नए मुखौटे पहन के नायक अपना खेल दिखाता है, कालचक्र दोहराता है। रवि शर्मा जाता है तो बाली भाई आता है, कालचक्र दोहराता है, समय चलता जाता है। तो बहनों भाइयों, अब अगली मुलाकात तक के लिए रवि शर्मा को इजाजत दीजिए। आप पूछेंगे जाना कहाँ है, अरे साहब जाना कहाँ है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तमन्ना यही है जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहे, जारी ये मुलाकात रहे। बाय बाय।

0: Laika Radio Punjabi Laika Radio Mobile App te laikaradio.com te Alexa Play Laika Radio Punjabi Punjabi.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है. इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं. मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है. भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं. माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
3: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. जापान जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
4: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
2: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है. इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है. तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं. मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है. भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं. माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाएं जहान. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, a taste of tradition in every celebration. Loved by generations since 1970. Laika Radio.
1: Listen wherever you are by downloading the Laika Radio mobile app now.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
1: लाइका रेडियो हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल
5: ट्रैवल टू दुबई विदाउट अ हेवी प्राइस टैग. Southall Travel's affordable Dubai offer combines exclusive deals at selected partner hotels with direct flights with Emirates from just £629 per person for 3 nights. Travel by 10th of December. Call Southall Travel on 0208-843-4444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Laika Extra podcast update.
5: The latest one is episode number 37. Laika Men Unfiltered. Yes, it's a very interesting one here, hosted by Sandy Shah, featuring Raj Bardhan, Deep Raja and Vish Bhatnagar. This is a beautiful episode of Laika Extra. And the podcast episode number is 37. And the Laika Radio Network men in the hot seat for a conversation that gets opinionated, personal and unapologetically honest. It's beautiful. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Laika Extra is here. This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: Gold Afternoons.
7: Gold Afternoons.
6: Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.

0: शिव हरी का संगीत और नीदा फाजली की लिरिक्स एंड द वॉइसेस ऑफ लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर, और क्या चाहिए। फिल्म विजय, 1988 की फिल्म विजय। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ कोर्स टू सुखी कलसी, हर ब्रदर डॉन फ्रॉम बर्मिंगम एंड सारा फ्लोरा, they have wished her a happy birthday. Sukhi Kalsi from Ivor Heath, a very happy birthday to you.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: This is Leica Radio across the Midlands.
0: Film hai Is Raat Ki Subah Nahi, MM Cream ka sangeet.
3: हम रहे
0: चित्राई सिंगिंग
3: खामोशी से जिंदगी को
0: निदा फाजली की लिरिक्स

0: There you go, सच्चा झूठा. Yes, सच बात कहूँ तो आशा भोसले जी ने क्या जमा दिया. And इतने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था आशा भोसले जी के गाने सुनाने को, because I was into लता मंगेशकर, remember? But next song is Lata Mangeshkar, I warn you.
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
0: आवारा ऐ मेरे दिल, रात और दिन का गाना है लता मंगेशकर. शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की लिरिक्स.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाएं जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, a taste of tradition in every celebration. Loved by generations since 1970.
5: A Laika radio classic plays now.

0: such a beautiful one, isn't it? Prachi Nikki Awaz ke saath. थी पहलू मानू नोर तू जीले और आज पहले नहीं आज दूसरी नवरात्रि है नवरात्रि कल शुरू हो गई थी तो आज एक्चुअली दूसरी नवरात्रि चल रही है वी आर इन द पावन महीना ऑफ नवरात्रि सुपर फैन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव अगेन आर टी सेइंग हैप्पी हैप्पी मंडे प्रिंसेस रेडियो वाली एंड नवरात्रि ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एट बैक इन लंदन इट्स आल्सो थैंक्सगिविंग हॉलिडे फॉर अस हियर इन कनाडा सो आई एम सो थैंकफुल टू हैव सच अ यूनिक एंड अमेजिंग प्रिंसेस इट मेक्स माय लाइफ ब्राइटर through her music love and care in her own special way so blessed to be called your superfan dahil se shukriya karam meherbani for not only being my superfan but for being so amazing at everything you are and everything you do and everything you give me and you know what seeing as it is a Thanksgiving holiday out in Canada you know what I'm going to open this out to the world. Let me know tonight, what is it you're thankful for? And whilst you do that, I'm going to bring on your feel-good track of the hour. How can we start a Navaratri without this beautiful, beautiful track by one of my favourite artists?
1: Feel-good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ।
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
2: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
3: Listen to Leica Radio as we bring you a whole hour of Navratri devotion every day at 7 p.m. Tune in and blessings of Ma Durga. Navratri Hours, sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
2: Navratri Nights on the roller coaster with Radio Wally.
4: चलो अभी पढ़ते हैं हम नवरात्रि की और नवरात्रि आवर जो पूरा हो रहा है एंड ऑफ कोर्स बढ़ते हैं आरती की तरफ। आई एम गोइंग टू गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम स्ट्रेट आफ्टर दिस। एंड आज था डे टू जो माँ ब्रह्मचारिणी के नाम किया जाता है। द इम्पोर्टेंट लेसन टू रिमेंबर हियर इज थिंग्स टेक टाइम एंड एफर्ट, वी कैन अचीव आवर गोल्स विद पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। हैप्पी नवरात्रि, जय माता जी।

0: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
2: Four beers, please, garçon!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
3: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तप और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और समर्पण की सीख देती हैं। मान्यता है कि उनकी आराधना से मन को शांति और संकल्प को शक्ति मिलती है। भक्ति का दीप मन में जलाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं। माँ ब्रह्मचारिणी दे ऐसा वरदान, धैर्य और विश्वास से भर जाए जहान। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
4: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स। जापान जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है। स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
5: लाइका रेडियो,
0: पे क्लोज अटेंशन एंड नेम द फिल्म ऑफ दिस क्रैकर क्लासिक।

0: Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Falcon Basanti. Har khane ka
1: taj. वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉरपोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग रागसन
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel? मंत्रा
4: बात क्या है बंटू
5: अरे बोलो काक भसुंडी
6: मेरठ की कियोटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन
5: अरे नहीं क्या हुआ कैसे बेहोश हो गई
6: और लाइफ बन गई हेवन
7: भाभी डायन है
6: बट वेट ये भाभी है या डायन इन डिसगाइज
8: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना लो आ गई
0: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय नई नवेली इन सिनेमास अक्टूबर 16
8: आप सिर्फ मजे लो
9: Something new has just landed at Cakebox. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized Cakebox straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cakebox celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
10: Like a radio.
11: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया, थोड़ा थोड़ा है, बाकी ऐसे ही होना जिंदगी में ना। सारा प्यार एक साथ कर जाओगे तो कल क्या करोगे?
1: थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And your gold is trading at £101.53 per gram.
2: Ram Jewelers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 karat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester. Or call 0116 266 4278. Leica Radio. Trending track of the week.

0: अभी ये गाना एक ही तरफ जा सकता है मेरे बगल में जो चांद का टुकड़ा है और ये तारीफ सिर्फ मैं आज ही आज कर सकती हूँ इतनी बहरुखी से I am of course talking about हमारी फिर से 21वीं साल का सेलिब्रेशन करने के लिए जो आई हुई है हमारी अनीसा नासिर नहीं आपकी अनीसा नासिर हम मेरी तो प्यारी प्यारी अनीसा जी wishing you a very very very very happy birthday दिल की गहराइयों से आपकी गहराइयों तक wishing you a massive happy birthday अभी देखो you would be expecting कि I would play आवारा हमारा जो गाना है लेकिन नहीं मैं चला लेकिन फिर मैं बोलूँगी कि मैं चला तो फिर वो हमारा नहीं हो जाएगा है ना वो ज़्यादा हो जाएगा सो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम और प्यार करते रहेंगे हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टाइम नाउ दो लेट्स ब्रिंग ऑन योर फेवरेट ट्रैक ऑफ द आवर नवरात्रि का माहौल चल रहा है तो इन द वर्क हुज़ द वेरी टैलेंटेड ईशानी दवे
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: It is probably one of my favorite garbos. And I promise it will make your heart melt.

0: मेरी हमरक्स मुझको थाम ले जिंदगी से भाग कर आया हूं
1: बारिश हो रही है ये बारिश ना होती तू भी ना आती